0: ସାହସୀ ହୁଅ, ବୀରତ୍ୱ ପ୍ରଦର୍ଶନ କର, କାରଣ ଦୁର୍ବଳତା ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ସାହସ ହେଉଛି ଜୀବନ। ଆମ ବାୟୁସେନାର ପ୍ରତିଟି ଯବାନ ଏହି ବୀରତ୍ୱର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ, କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ। ଆକାଶବାଣୀ ସମ୍ବଲପୁର, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ସକାଳ 6 ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୀରେ ସମ୍ବାଦ, ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀ କେନ୍ଦ୍ରରୁ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC के 10वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। ये आयोजन 10 तारीख तक चलेगा। इसमें दूरसंचार, डिजिटल कनेक्टिविटी और तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में भारत की उल्लेखनीय प्रगति को प्रदर्शित किया जाएगा। साथ ही ये सहयोग, निवेश और ज्ञान के आदान प्रदान के लिए वैश्विक मंच उपलब्ध कराएगा। IMC 2026 का विषय है स्केल विदाउट बाउंड्रीज, यानी सीमाओं से परे विस्तार। ये डिजिटल नवाचार अगली पीढ़ी की कनेक्टिविटी और प्रौद्योगिकी आधारित विकास में भारत की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है। इसका आयोजन संयुक्त रूप से दूरसंचार विभाग और सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सरकार प्रमुख के रूप में निरंतर 25 वर्षों की जनसेवा पूरी की है। श्री मोदी ने नई दिल्ली के सरोजिनी नगर स्थित श्री विनायक मंदिर में पूजा अर्चना की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत संकल्प सभा को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि दूरदर्शी नीतियों और कड़ी मेहनत के माध्यम से भारत वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के अपने सपने को अवश्य पूरा करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये भारत के लिए बड़े लक्ष्य निर्धारित करने का समय है।
2: विकसित भारत का लक्ष्य, आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य, इकोनॉमी को टॉप 3 में लाने का लक्ष्य, गरीबी का नामो निशान मिटाने का लक्ष्य, ड्रग्स फ्री इंडिया बनाने का लक्ष्य। हमें ऐसा भारत बनाना है कि लक्ष्य ऐसे हो कि हर क्षेत्र में तिरंगा शान से लहराए।
1: जापान, भूटान, फिलीपींस, बेल्जियम, नेपाल, नाइजीरिया और बोत्सवाना सहित कई देशों के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस उपलब्धि पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसके लिए सभी का आभार व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के अवसर पर 17 सितंबर को गुजरात के वडनगर से शुरू हुई बाइक सेवा यात्रा भी कल काशी में संपन्न हो गई है। महिला और बाल विकास विभाग का 2 दिन का शिखर सम्मेलन आज नई दिल्ली में आयोजित होगा। ये सम्मेलन

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर आयोजित विभागीय सम्मेलनों की श्रृंखला का दूसरा कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर तालमेल बनाना और महिला तथा बाल विकास से जुड़े कामों को और प्रभावी बनाना है। वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद की 57वीं बैठक आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में जीएसटी विवादों के समाधान और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा होगी। इसका उद्देश्य अनुपालन में लगने वाले समय और लागत को कम करना है। भारत ने अमरीका और 13 अन्य देशों के साथ मिलकर एक संयुक्त मंत्री स्तरीय बयान पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें संरचनात्मक अतिरिक्त क्षमता और उत्पादन की समस्या से निपटने तथा वैश्विक बाजारों को प्रभावित करने वाली गैर बाजार नीतियों पर रोक लगाने के उपायों का आह्वान किया गया है। 15 भागीदार देशों द्वारा हस्ताक्षरित ये संयुक्त मंत्री स्तरीय बयान अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय USTR ने कल रात जारी किया। बयान में देशों ने बाजारों को प्रभावित करने वाली गैर बाजार नीतियों को समाप्त करने सहित संरचनात्मक अतिरिक्त क्षमता और उत्पादन को खत्म करने के उपाय करने का आह्वान किया। आज वायुसेना दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष वायुसेना दिवस की थीम है इंडियन एयरफोर्स इनफेलेबल इम्प्रेटेबल एंड प्रिसाइज, यानी अचूक अभेद्य और सटीक। वायुसेना दिवस की पूर्व संध्या पर आकाशवाणी के माध्यम से अपने संदेश में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने कहा कि भारतीय वायुसेना सतर्कता और दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ देश की रक्षा करने के लिए हमेशा तैयार है। चाइना ओपन टेनिस प्रतियोगिता में आज महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। कैरोलिना मुचावो का सामना निकोला बार्तुनकोवा से होगा, वहीं मीरा एंड्रीवा का मुकाबला एकातेरिना अलेक्जेंड्रोवा से होगा। मौसम विभाग ने आज केरलम माहे तमिलनाडु पुदुचेरी कारेकाल उत्तराखंड पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हिंदी रे संवाद सुनिले आकाशवाणी दिल्ली केंद्ररो आकाशवाणी संबलपुर आरंभ करुचु भक्ति संगीतर कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रमर प्रथम भक्ति अर्घ्यटी शुणंतु मंगलचरण विश्वाळंकर रचनारु कंठशिल्पी कालीचरण पाढ़ी।

0: ଆକାଶବାଣୀର ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ, ଆକାଶବାଣୀ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାଧ୍ୟମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ।
1: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए।

प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।

0: ଶୁଣିଲେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୀତ। କଣ୍ଠଦାନ କଲେ କାଳୀପ୍ରସାଦ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭା ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ଗୀତ ରଚନା ଶ୍ରୀପତି ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଏବଂ ପୁରାତନ ରଚନା। ଆକାଶବାଣୀ ସମ୍ବଲପୁର, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ସକାଳ 8ଟା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ହିନ୍ଦୀରେ ଓ ତାପରେ ଇଂରାଜୀରେ ସମ୍ବାଦ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀ କେନ୍ଦ୍ରରୁ। ସକାଳ 8:30ରେ ଶୁଣିବେ ପୀଠ ପରିକ୍ରମା, ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରିବୁ ଆକାଶବାଣୀ କଟକ କେନ୍ଦ୍ରରୁ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में 10वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन करेंगे। वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद की 57वीं बैठक आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगी। भारत ने अमेरिका और 13 अन्य देशों के साथ मिलकर प्रमुख विनिर्माण क्षेत्रों में वैश्विक अतिरिक्त क्षमता और उत्पादन की समस्या से निपटने के लिए संयुक्त मंत्री स्तरीय बयान पर हस्ताक्षर किए। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर नहीं रहे, 75 वर्ष की आयु में आज गोवा में निधन। केरलम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में आज तेज बारिश की संभावना। और मानुष शाह और दिया चिताली की भारतीय जोड़ी ने इतिहास रचते हुए पहली बार चाइना ग्रैंड स्मैश टेबल टेनिस के सेमीफाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में 10वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। कल शुरू हुआ ये आयोजन 10 अक्टूबर तक चलेगा। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का विषय है स्केल विदाउट बाउंड्रीज, यानी सीमाओं से परे विस्तार। इसमें दूरसंचार, डिजिटल कनेक्टिविटी और तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में भारत की उल्लेखनीय प्रगति को प्रदर्शित किया जाएगा। इसका आयोजन संयुक्त रूप से दूरसंचार विभाग और सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया कर रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस वर्ष का आयोजन 9 प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है।
2: इस वर्ष के आयोजन में 5G और 6G, AI, सेमीकंडक्टर, साइबर सुरक्षा, क्वांटम कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग और पर्यावरण से जुड़े तकनीकी समाधान जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर भी चर्चा की जाएगी। यह कार्यक्रम 4 नए क्षेत्रों स्मार्ट मोबिलिटी, स्टेडियम एक्सपीरियंस, औद्योगिक रोबोट और परिवहन तकनीक पर भी ध्यान केंद्रित करेगा। कार्यक्रम में इस वर्ष 100 से अधिक देशों से 1.5 लाख से अधिक लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। साथ ही 500 से अधिक साझेदार और प्रदर्शक, 600 स्टार्टअप और 900 विशेषज्ञ भी भाग ले रहे हैं। दीपेंद्र कुमार के साथ दिलनशी आरजू, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद की 57वीं बैठक आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगी। हमारे संवाददाता ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में जीएसटी से जुड़े विवादों के समाधान और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा होगी।
3: इन सुधारों का मुख्य उद्देश्य कर अनुपालन में लगने वाले समय और लागत को कम करना है। वित्त मंत्रालय के अनुसार सरकार जीएसटी व्यवस्था में सुधार के अगले चरण के लिए एक 5 सूत्री योजना का प्रस्ताव रखेगी। इन प्रस्तावों में प्रशासनिक अड़चनों को स्वचालित और आसान बनाना शामिल है, जिससे खासकर छोटे कारोबारियों पर अनुपालन का बोझ कम हो सके। इस योजना के तहत प्रक्रिया और संरचनात्मक सुधार, जीवन और कारोबार को आसान बनाना तथा सेवाओं के निर्यात और ई कॉमर्स से जुड़े बदलाव शामिल हैं। प्रस्तावित प्रमुख बदलावों में खरीदार और विक्रेताओं के बीच इनवॉइस का स्वतः मिलान, कागजी कार्रवाई कम करना और छोटे कारोबारियों के लिए कई राज्यों में पंजीकरण की आवश्यकता को समाप्त करना शामिल है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
1: भारत ने अमेरिका और 13 अन्य देशों के साथ मिलकर प्रमुख विनिर्माण क्षेत्रों में वैश्विक अतिरिक्त क्षमता और उत्पादन की समस्या से निपटने के लिए एक संयुक्त मंत्री स्तरीय बयान पर हस्ताक्षर किए हैं। एक रिपोर्ट।
4: अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय द्वारा जारी इस साझा बयान का मुख्य उद्देश्य वैश्विक बाजारों को प्रभावित करने वाली गैर बाजारी नीतियों पर रोक लगाना है। ये कदम हाल ही में अमेरिका के विस्कॉन्सिन राज्य के मिलवाकी शहर में हुई G20 देशों के व्यापार मंत्रियों की बैठक के बाद उठाया गया है। बयान में कहा गया है कि दुनिया के कई देश अपनी स्थानीय उद्योगों, श्रमिकों और अर्थव्यवस्थाओं को ऐसी व्यापारिक विकृतियों से बचाने के लिए कदम उठा रहे हैं। सभी देशों ने जोर दिया है कि आपसी सहयोग, सूचना के आदान प्रदान और मिलकर की गई कार्रवाई से इन प्रयासों को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। इस महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले 15 भागीदारों में भारत और अमेरिका के अलावा अर्जेंटीना

0: ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोपीय संघ, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, मैक्सिको, पोलैंड, तुर्की और ब्रिटेन शामिल हैं। समाचार कक्ष से मैं पूजा।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
2: दांत खाज खुजली में आराम, हानि रहित बेदाग जालिम लोशन।
3: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूरे किए हैं। उनकी ये यात्रा सेवा और सुशासन के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता की मिसाल रही है। आज की हमारी विशेष श्रृंखला में हम आपको ऐसी ही एक पहल के बारे में जानकारी दे रहे हैं जिसमें सेवा और सुशासन की ये सोच धरातल पर दिखाई देती है। ये पहल है केरलम में शुरू की गई कोच्चि वाटर मेट्रो सेवा।
2: कोच्चि के जलमार्ग हमेशा से शहर की पहचान रहे हैं। आज वही जलमार्ग कोच्चि वाटर मेट्रो के जरिए यात्रियों की एक नई पीढ़ी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 अप्रैल 2023 को इसका उद्घाटन किया और अगले ही दिन वाटर मेट्रो ने यात्रियों के लिए सेवा शुरू कर दी। तब से ये शहरी सार्वजनिक परिवहन में एक नई पहल के तौर पर उभरी है जो कोच्चि के द्वीपों को मुख्य भूमि से जोड़ती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वाटर मेट्रो से कोच्चि में ट्रैफिक कम करने में मदद मिलेगी।
3: वाटर मेट्रो से कोच्चि के इर्द गिर्द के अनेक द्वीपों में रहने वाले साथियों को सस्ता और आधुनिक ट्रांसपोर्ट मिलेगा। ये जेटी, बस टर्मिनल और मेट्रो नेटवर्क के बीच इंटर मॉडल कनेक्टिविटी भी प्रदान करेगी। इससे कोच्चि की ट्रैफिक समस्याएं भी कम होगी और बैक वाटर टूरिज्म को भी नया आकर्षण मिलेगा।
2: कोच्चि के लेखक टीएन वेणुगोपाल ने बताया कि वाटर मेट्रो ने शहर में जल परिवहन को बदल दिया है।
4: वाटर मेट्रो ने कोच्चि में जल परिवहन की व्यवस्था को पूरी तरह से बदल दिया है। ये अलग अलग द्वीपों और मुख्य भूमि के बीच पहुंच प्रदान करती है। परिवहन के किफायती साधन के तौर पर वाटर मेट्रो धीरे धीरे आम आदमी के लिए एक लग्जरी सुविधा के रूप में उभर रही है। इसने पर्यटन क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया है क्योंकि अब देश विदेश के पर्यटक कोच्चि के बैकवाटर्स में वाटर मेट्रो की यात्रा को अपनी यात्रा की योजना का अहम हिस्सा मानते हैं, जिससे सड़कों पर यातायात की समस्या काफी हद तक कम करने में सहायता मिलेगी।
2: कोच्चि भारत का पहला शहर है जहां वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। ये वाटर मेट्रो 15 रूटों पर चलाई जा रही है। वाटर मेट्रो एयर कंडीशनड और बैटरी से चलने वाली नाव है जिनमें चार्जिंग की खास सुविधाएं और यात्रियों के लिए आधुनिक टर्मिनल बने हैं। यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस साल 2 अक्टूबर तक वाटर मेट्रो में 77 लाख से ज्यादा यात्रियों ने सफर किया। 2 अक्टूबर को ही 11,670 यात्रियों ने इस सेवा का लाभ उठाया। तिरुवनंतपुरम से स्मिति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल रात आबुधाबी में कोटे डी आइवर के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री तेने बिरहामियामा आउट उतारा से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों पक्षों ने आपसी विश्वास, क्षमता निर्माण और साझा हितों पर आधारित बढ़ती रक्षा साझेदारी पर चर्चा की। उन्होंने प्रशिक्षण और संस्थागत स्तर पर आदान प्रदान बढ़ाने सहित रक्षा और आतंकवाद निरोध के क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत करने के अवसरों पर भी विचार विमर्श किया। आबुधाबी में हुई ये बैठकें डॉक्टर जयशंकर की घाना, कोटे डी आइवर और इथियोपिया की 5 दिन की आधिकारिक यात्रा का एक हिस्सा है। इस यात्रा का उद्देश्य इन तीनों अफ्रीकी देशों के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करना है। रूस ने यूक्रेन के कीव और करीब 12 अन्य क्षेत्रों को निशाना बनाते हुए 70 मिसाइलें और दर्जनों ड्रोन दागे। यूक्रेन पर किए गए हमले में कल 25 लोगों की मौत हो गई और 100 लोग घायल हुए। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की के अनुसार यूक्रेन की सेना ने 44 मिसाइलों को रोक दिया और 117 ड्रोन को निष्क्रिय किया, लेकिन वह पूरे हमले को रोकने में सफल नहीं रही। राष्ट्रपति

0: में जेलेंस्की ने हमले की निंदा करते हुए इसे हिंसा के जानबूझकर किए गए प्रदर्शन का रूप बताया। ईरान समर्थित सशस्त्र समूह हुती ने सऊदी अरब के दो हवाई अड्डों पर हमला किया, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई और 30 से अधिक लोग घायल हुए हैं, जिससे पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है। इस बीच हुती अधिकारियों ने दावा किया है कि विद्रोहियों ने यमन के दक्षिण पश्चिमी तट के प्रमुख इलाकों धुबाब अल जदीद और बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य के कुछ हिस्सों पर फिर से नियंत्रण हासिल कर लिया है। हालांकि यमन सरकार के एक अधिकारी ने इन दावों को खारिज किया है। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर हमारे बीच नहीं रहे। आज सुबह गोवा स्थित उनके आवास पर दिल का दौरा पड़ने से 75 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। एक श्रद्धांजलि।
1: मैं इंडस्ट्री का हूँ नहीं, मैं यहाँ आता हूँ, काम करता हूँ, वापस भाग जाता हूँ। मैं गांव खेड़े का हूँ और वही का रहूंगा और वही अच्छा लगता है। जरूरतें सीमित होना तो बहुत आसान हो जाता, इसी है नहीं। बड़ा बड़ा मजा आता है, सिर्फ अपने यहाँ शहर में जैसे दीवारें होती है ना घर में, हमारे यहाँ पहाड़ है, इस तरफ पहाड़, इस तरफ पहाड़, बीच में हम रहते हैं।
2: अपनी काबिलियत और दमदार अभिनय से सबके दिलों पर राज करने वाले नाना पाटेकर आज हमारे बीच नहीं हैं। सबकी आंखें नम है, फिल्म उद्योग से लेकर उनके फैंस के बीच शोक की लहर है। अभिनेता नाना पाटेकर ने 1978 में आई फिल्म गमन से फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। नाना ने करीबन 8 वर्षों तक फिल्म इंडस्ट्री में संघर्ष किया। फिल्म परिंदा में अन्ना की भूमिका को लोगों ने काफी सराहा।
3: न भाई, न बहन, न बीवी, न बेटा,
4: कोई किसी का भाई नहीं, कोई किसी का बेटा नहीं, जा अब्दुल।
2: फिर आई 1994 में क्रांतिवीर, जहां उनके दमदार अभिनय को नई पहचान मिली। इसके बाद अग्नि साक्षी, तिरंगा, डॉक्टर प्रकाश, बाबा आमटे द रियल हीरो, नट सम्राट और वेलकम जैसी फिल्मों ने उनकी विरासत को और मजबूत किया। फिल्म अग्नि साक्षी में उनके नेगेटिव किरदार को खूब सराहा गया।
5: क्यों भाई इतना शोर क्यों मचा रहे हो, किस बात के लिए खुश हो इतने? अगर खुश हो तो खुश रहो, ढिंडोरा क्यों पीट रहे हो? तो कौन सा तीर मारा, ऐसा कौन सा एहसान किया दुनिया पर पैदा होकर, और तुम्हारा क्या कंट्रीब्यूशन है इसमें?
2: अभिनेता नाना पाटेकर फिल्मों में अभिनय से 4 बार फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किए जा चुके हैं।
4: कलम वाली भाई क्रांति लाना चाहती थी, कलम के जोर पर काले वर्तमान को खत्म करना चाहती थी, कौन समझा उसकी बात को, किसे जगाती वो? मैं जाग गया, कुछ अच्छा काम करके जा रहा हूँ, सुकून है, लेकिन ध्यान में रखना तुम्हारी ये खामोशी कल तुम्हारे बच्चों के लिए रोना बन जाएगी।
2: इसी के साथ उन्हें 3 बार अपनी एक्टिंग के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुके हैं।

0: नाना पाटेकर ने हिंदी फिल्मों के अलावा मराठी सिनेमा में भी अपना लोहा मनवाया। और अब मौसम का समाचार। मौसम विभाग ने आज केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अलग अलग स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। साथ ही आज बिहार, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर और झारखंड में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहने की संभावना है। खेलों में पेचिंग में मनुष शाह और दिया चिताली ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए WTT चाइना ग्रैंड स्मैश टेबल टेनिस के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। मनुष और दिया सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय मिक्स डबल्स जोड़ी बन गई हैं। आज भारतीय वायुसेना दिवस है और इस वर्ष का विषय है अचूक, अभेद्य और सटीक। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद फरहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा में 25 साल पूरे होने का समाचार कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। लोकसत्य ने प्रधानमंत्री का संकल्प प्रकाशित किया है, भारत के विकसित होने तक ना थकूंगा ना रुकूंगा। दैनिक ट्रिब्यून सहित कई अखबारों ने प्रधानमंत्री मोदी की वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी से मुलाकात का भी चित्र प्रकाशित किया है। RBI द्वारा त्योहारों से पहले रेपो दर बढ़ाने का समाचार भी कई अखबारों ने सचित्र प्रकाशित किया है। अमर उजाला की सुर्खी है, रेपो दर में 0.25% की वृद्धि, कर्ज की किश्त बढ़ेगी। राजस्थान पत्रिका ने आज भारतीय वायुसेना दिवस पर खबर दी है, जहां हौसलों की उड़ान वहीं भारतीय वायुसेना, 94 साल में बदली वायुसेना की रणनीति। दैनिक जागरण लिखता है, छठी कक्षा में देखा सपना और ऑपरेशन सिंदूर से फलक पर छा गई व्योमिका। नाम के अनुरूप आकाश में उड़ान भरने वाली, देश का गौरव है लखनऊ की बेटी, बनी फौजियों के गांव की बहू। ठंडे इलाके के बजाय गर्म क्षेत्र में आ रहे जीव जंतु, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने किया शोध, हिंदुस्तान की खबर है।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में 10वीं इंडिया

0: আকাশবাণী সম্বলপুর বর্তমান সময় পূর্বাহ্ন 10টা হওয়া যাচ্ছে। শুনুন হিন্দির সংবাদ রিলে করে প্রচার করছু আকাশবাণী দিল্লি কেন্দ্র।
1: নমস্কার, আকাশবাণী সমাচার কে সাথ মে ফরহত নাজ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में 10वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। कल शुरू हुआ यह आयोजन 10 अक्टूबर तक चलेगा। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 का विषय है स्केल विदाउट बाउंड्रीज, यानी सीमाओं से परे विस्तार। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस वर्ष का आयोजन 9 प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है।
2: इस वर्ष के आयोजन में 5G और 6G, AI, सेमीकंडक्टर, साइबर सुरक्षा, क्वांटम कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग और पर्यावरण से जुड़े तकनीकी समाधान जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर

0: चर्चा की जाएगी। यह कार्यक्रम चार नए क्षेत्रों स्मार्ट मोबिलिटी, स्टेडियम एक्सपीरियंस, औद्योगिक रोबोट और परिवहन तकनीक पर भी ध्यान केंद्रित करेगा। कार्यक्रम में इस वर्ष 100 से अधिक देशों से 1.5 लाख से अधिक लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। साथ ही 500 से अधिक साझेदार और प्रदर्शक, 600 स्टार्टअप और 900 विशेषज्ञ भी भाग ले रहे हैं। दीपेंद्र कुमार के साथ दिलनशी आरजू, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद की 57वीं बैठक आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में जीएसटी से जुड़े विवादों के समाधान और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा होगी। सरकार ने सिक्किम में रंगपो और रानीपुल के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 10 के विकास के लिए 993.64 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि इस परियोजना के तहत इस मार्ग को पक्के किनारे वाले 2 लेन के राजमार्ग में उन्नत किया जाएगा। भारत ने अमेरिका और 13 अन्य देशों के साथ मिलकर प्रमुख विनिर्माण क्षेत्रों में वैश्विक अतिरिक्त क्षमता और उत्पादन की समस्या से निपटने के लिए एक संयुक्त मंत्री स्तरीय बयान पर हस्ताक्षर किए हैं। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय द्वारा जारी इस साझा बयान का मुख्य उद्देश्य वैश्विक बाजारों को प्रभावित करने वाली गैर बाजार नीतियों पर रोक लगाना है। ये कदम हाल ही में अमेरिका के विस्कॉन्सिन राज्य के मिलवॉकी शहर में हुई G20 देशों के व्यापार मंत्रियों की बैठक के बाद उठाया गया है। रूस ने यूक्रेन के कीव और करीब 12 अन्य क्षेत्रों को निशाना बनाते हुए 70 मिसाइलें और कई ड्रोन दागे। यूक्रेन में कल हुए इस हमले से 25 लोगों की मौत हो गई और 100 लोग घायल हो गए। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमीर ज़ेलेंस्की ने हमले की निंदा की है। आज भारतीय वायुसेना दिवस है। इस वर्ष का विषय है अचूक, अभेद्य और सटीक। वायुसेना दिवस की पूर्व संध्या पर कल आकाशवाणी से अपने संदेश में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने कहा कि भारतीय वायुसेना सतर्कता और दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ देश की रक्षा के लिए हमेशा तैयार है।
2: परफॉर्मेंस इन ऑपरेशन सिंदूर,
3: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वायुसेना के प्रदर्शन ने हमें गौरव से भर दिया है। हमने दुनिया को दिखाया है कि कैसे वायु शक्ति का उपयोग कर कुछ ही दिनों में निर्णायक सैन्य परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। साहसिक और सटीक हमलों ने राष्ट्र को उसकी ताकत और हवाई शक्ति के आक्रामक इस्तेमाल के महत्व को दिखाया है।
1: त्योहारों के सीजन में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए उत्तर रेलवे नई दिल्ली और श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच आरक्षित विशेष रेलगाड़ियों के 2 फेरे चलाएगा। रेल संख्या 04083 नई दिल्ली कटरा 9 और 16 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे नई दिल्ली से रवाना होगी और अगले दिन सुबह 3 बजे कटरा पहुंचेगी। वापसी की रेल 04084 कटरा नई दिल्ली 10 और 17 अक्टूबर को सुबह 10 बजे कटरा से रवाना होगी और उसी दिन रात 11:30 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का आज सुबह गोवा में उनके आवास पर दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे 75 वर्ष के थे। नाना पाटेकर हिंदी और मराठी सिनेमा के जाने माने अभिनेताओं में शामिल थे। कई दशकों के फिल्मी करियर में उन्होंने विभिन्न भूमिकाओं में अपनी पहचान बनाई। 1978 में आई फिल्म गमन से नाना पाटेकर ने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। फिल्म परिंदा में अन्ना की भूमिका को और अग्निसाक्षी में उनके नकारात्मक किरदार को लोगों ने काफी सराहा।
4: क्यों भाई इतना शोर क्यों मचा रहे हो? किस बात के लिए खुश हो इतने? अगर खुश हो तो खुश रहो, ढिंडोरा क्यों पीट रहे हो? तो कौन सा तीर मारा, ऐसा कौन सा एहसान किया दुनिया पर पैदा होकर, और तुम्हारा क्या कंट्रीब्यूशन है इसमें? आवाज कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, लोगों की नींद हराम कर रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिवंगत नेता को निधन पर दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि बहुत कम अभिनेताओं में वो गहराई, अलग पहचान और दमदार मौजूदगी थी जो श्री नाना पाटेकर में थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मां रूपी सोरेन के निधन पर दुख व्यक्त किया है। पेचिंग में मानुष शाह और दिया चिताले ने इतिहास रचते हुए WTT चाइना ग्रैंड स्मैश टेबल टेनिस के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
5: हिंदी थी संवाद सुनले आकाशवाणी दिल्ली केन्द्रनो। आपण माने कार्यक्रम सुनुछन आकाशवाणी संबलपुर केन्द्रनो। कार्यक्रम प्रसारित होचे मीडियम वेव थी 317.5 मीटर संगे 945 किलोहर्ज आर FM 101 मेगाहर्ज थी और न्यूजन AIR मोबाइल एप जरिए। श्रोता बंधु समय सकाल 10:05 प्रचार करुचु ओडिया सिनेमा गीतर कार्यक्रम। कार्यक्रमर पहला गीत सुनुन सिनेमा चिन्हा अचिन्हा। कंठ देइचन प्रणव किशोर पट्टनायक, गीत रचना सुरेन्द्र विद्याधर, संगीत निर्देशना वासुदेव रथ।

0: पीएम किसान हिताधिकारीक पई जरूरी सूचना योग्य चासिंग क निकटरे सहायता पहुंचाइबा एवं डाटाबेस को स्वच्छ और निर्भुल करिबा पई भारत सरकार आरंभ करुछंती एक स्वतंत्र अभियान अक्टोबर 2 रु 31 तारीख पर्यंत राज्यव्यापी चलिबो एही अभियान पीएम किसान योजनार आर्थिक सहायता निरवच्छिन्न भावे पाइबा पई एग्रीस्टाक पोर्टल रे कृषक पंजीकरण बैंक खाता सह आधार सीडिंग एवं ई केवाईसी करिबा बाध्यतामूलक एथिपई पंचायत स्तरीय कृषि कर्मचारी राजस्व अधिकारी किंबा निकटस्थ जनसेवा केन्द्र को जाई एही प्रक्रिया तुरंत संपूर्ण करंतु कृषि और कृषक सशक्तिकरण विभाग ओडिशा सरकार
1: संख्या सिंदूर ई सिनेमानु शीर्षानंद दास कानून रचना थो सुनुनी गीत संगीत निर्देशना अक्षय महांती कंठ देचन अनुराधा पोडवाल और अक्षय महांती।

0: पीएम किसान हिताधिकारी जरूरी सूचना योग्य चाषी निकट में सहायता पहुंचाइबा एवं डाटाबेस को स्वच्छ और निर्भुल करने भारत सरकार आरंभ करुछंती एक स्वतंत्र अभियान। अक्टोबर 2-31 तारीख पर्यंत राज्यव्यापी चलिबो एही अभियान। पीएम किसान योजनार आर्थिक सहायता निरवच्छिन्न भावे पाइबा पाई एग्रिस्टाक पोर्टाल रे कृषक पंजीकरण बैंक खाता सह आधार सेडिंग एवं ई केवाईसी करिबा बाध्यतामूलक। एथिपाई पंचायत स्तरीय कृषि कर्मचारी राजस्व अधिकारी किंबा निकटस्थ जनसेवा केन्द्र को जाई एही प्रक्रिया तुरंत संपूर्ण करंतु। कृषि और कृषक सशक्तिकरण विभाग ओडिशा सरकार।
1: इथर सुनून ए गीतटा गाइछन करसन दास साक्थिया।

0: GST disputes and improve the flow of input tax credit with the aim of reducing the time and cost of compliance. Sources in the Finance Ministry said the government will propose a five-pronged plan for the next set of reforms to the GST system. These reforms are aimed at automating and easing a lot of current administrative bottlenecks in the GST system and reducing the compliance burden, especially for small businesses. Prime Minister Narendra Modi has completed 25 years in public service, a journey defined by the mantra of Jan Seva Se Desh Seva and a relentless commitment that continues. Guided by this vision for Seva and Sushasan, the government has been ceaselessly working towards achieving the goal of a Vikasit Bharat by 2047. Today, in our special series, we bring you an instance of how this vision has been translated into action through the redevelopment of the historic Jallianwala Bagh Smarak.
1: As we take the name of Jallianwala Bagh, the painful and horrific memories of the brutality by British government comes back. It was here in Amritsar on the Baisakhi day in 1919 when troops led by Brigadier General Reginald Dyer killed hundreds of innocent people. They were assembled here to peacefully protest against the Rowlatt Act. Jallianwala Bagh Smarak, which was then constructed in the memory of those martyred, was renovated after decades and dedicated to the nation by Prime Minister Narendra Modi on 28 August 2021. Multiple development initiatives were undertaken at the complex. Elaborate heritage restoration works carried out in sync with the local architectural style of Punjab. Four museum galleries were created showcasing the historical value of events that unfolded in Punjab during that period. A sound and light show started to display the events that happened on that day. Visitors to the Bagh from various parts of the country when contacted appreciated the redevelopment.
2: था वो मैंने आज यहाँ पे आकर के खुद ने अपनी आंखों से देखा और मुझे महसूस भी हो रहा है गवर्नमेंट इंडिया ने बहुत अच्छा किया है जिससे कि यहाँ पे सब कुछ युवा पीढ़ी है जो और आगे की जनरेशन के लिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि वो आने वाले पीढ़ी भी देखेगी यहाँ पे कि पहले कैसे हुआ था और क्या हुआ था गवर्नमेंट इंडिया को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा.
1: The Jallianwala Bagh Smarak will always be remembered for years to come as an epitome of sacrifices made by Indians during the freedom struggle. Rajesh Bali, Akashwani News, Jalandhar.
0: This is Akashwani giving you the news.
3: News that keeps you informed. Follow us on X at AIR News Alerts and on Public at AIR News Alerts.
0: Welcome back to the Midday News. The Supreme Court today directed the Centre to constitute a three-member committee to examine whether pharmaceutical companies' marketing practices, including gifts and other benefits offered to doctors, require statutory regulation. A bench of Justices Vikram Nath and Sandeep Mehta issued the direction while hearing a plea seeking action against unethical interactions between drug companies and doctors. The centre has been asked to file an affidavit on compliance with the matter listed for further hearing on January the 29th. A case study on the evolution of water governance in Gujarat and India was launched at IIM Bengaluru yesterday in the presence of Secretary, Department of Drinking Water and Sanitation under Ministry of Jal Shakti, Ashok Kumar Meena. Taking a page from the case study, the Jal Shakti Secretary Meena spoke on how people's mission, backed by strong institutions, steady investment and Gram Panchayat ownership, can quicken transformation. Addressing media, former secretary in the Department of Drinking Water and Sanitation, Parameshwaran Iyer, spoke of key learning from the case study, including political leadership, public participation and role of Panchayat as envisioned by Prime Minister Narendra Modi.
4: You know, unless you have community management or people's participation or a Jan Andolan, and you devolve management to the lowest appropriate level, the panchayats, and get real ownership, it's very difficult to sustain these programs. And lastly, go big. And I think that's a hallmark of Chief Minister, Prime Minister's water management and water governance. Everything is at scale. It was done in Gujarat and it's done nationally.
0: The nation is celebrating the 94th anniversary of Indian Air Force today. Air Chief Marshal AP Singh highlighted the Indian Air Force growing capabilities and stressed that its true strength lies in its air warriors rather than merely in advanced equipment and technology. Addressing on Indian Air Force Day celebrations at Hindon Air Base in Ghaziabad, Air Chief Marshal Singh emphasized the role of air power in protecting national interests and described the Indian Air Force as the custodian of the skies.
5: The Indian Air Force, being the custodian of the air power, understands its role and responsibilities and is always alert, committed and ready to meet any contingency. We believe that any Air Force can have the most advanced aircraft in the world or most advanced systems in the world, but its true strength is measured by its operational preparedness. That is how quickly and confidently it can act whenever the call comes.
0: The Air Chief Marshal also recalled the IAF's combat operations during Operation Sindoor, saying the country saw firsthand the destructive power as well as the effective air defense operations of the Air Force during the operation. Veteran actor Nana Patekar passed away at the age of 75 after suffering a severe cardiac arrest at his residence in Goa this morning. Patekar, one of India's most acclaimed actors, was known for his performances across Hindi and Marathi cinema with a career spanning several decades. He earned widespread recognition for films such as Parinda, Krantiveer, Ab Tak Chappan and Welcome. Prime Minister Modi has said actor Nana Patekar was an outstanding artist who won the hearts of audiences through various roles. Addressing an event in New Delhi today, Mr. Modi said Nana Patekar's life was dedicated to the honour, dignity and pride of the tricolour. Mr. Modi highlighted that through his films, he strongly criticised the prevailing social system and worked against social evils. The Prime Minister said Nana Patekar was a strong advocate of taking firm action against anti-national elements.
6: मशहूर अभिनेता नाना पाटेकर जी अब हमारे बीच नहीं रहे। वो एक बेहतरीन कलाकार थे जिन्होंने अलग अलग किरदारों के माध्यम से दर्शकों का दिल जीता। नाना पाटेकर जी का जीवन तिरंगे की आन बान और शान के लिए समर्पित रहा। वो बंधनों में नहीं रहे, परिंदे की तरह फिल्मों के आसमान में उड़े। उन्होंने समाज में व्याप्त व्यवस्था पर अपनी फिल्मों के माध्यम से करारा प्रहार किया।
0: We bring you more from our correspondent.
7: Vishwanath Patekar, popularly known as Nana Patekar, was born on January 1, 1951 in Murud, Zanjira in Maharashtra. Nana was known for his intense performances, distinctive dialogue delivery and portrayal of complex characters.
8: Kalam wali bhai kranti lana chahti thi. Kalam ke zor par kale vartaman ko khatam karna chahti thi. Kaun samjha uski baat ko? Kise jagati wo? Main jaag gaya. कुछ अच्छा काम करके जा रहा हूँ, सुकून है।
7: A recipient of 3 National Film Awards, he was acclaimed for films including Parinda, Krantiveer, Agni Sakshi, Nat Samrat, Ab Tak Chappan and Yashwant. He made his Bollywood debut with Gaman in 1978 and went on to deliver notable performances in Shakti, The Power, Abharan, Taxi Number 9211 and Rajneeti. He gained widespread popularity as gangster Uday Shetty in Welcome and reprised the role in Welcome Back. He remained active in cinema until his final years, appearing in Houseful 5, O Romeo and Subedar, which was released recently. Prarthana, Akashwani News, Mumbai.
0: India has accused Pakistan of doublespeak on terrorism, saying Islamabad is attempting to gloss over its support for terror groups by announcing a reward for information on Jaish-e-Mohammed chief Masood Azhar. India said the world has not forgotten the 9/11, 26/11 and Pahalgam attacks. Exercising its right of reply in the UN General Assembly, India's First Secretary Raghu Puri said terrorism cannot be defeated through declarations and called for action against its perpetrators, financiers and sponsors. The Indian Meteorological Department, IMD, has forecast heavy rainfall conditions over Kerala, Mahe, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal, Uttarakhand, West Bengal and Sikkim during the day. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says government to connect 25 crore students through digital and online education programs. 5G connectivity reaches every district with over 5,50,000 base stations. GST Council deliberates on policy reforms to resolve disputes and improve input tax credit flow. Supreme Court directs Centre to form committee to curb unethical pharma marketing practices. Veteran actor Nana Patekar passes away. India accuses Pakistan of doublespeak on terrorism, says Islamabad cannot gloss over support to terror groups. and the nation honors sacrifices of air warriors on Air Force Day. With that, we end the midday news.
9: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से 25 करोड़ छात्रों को जोड़ेगी। उन्होंने कहा, 5,50,000 से अधिक 20 स्टेशनों के साथ 5G कनेक्टिविटी हर जिले तक पहुंची। वस्तु और सेवा कर परिषद में विवादों को सुलझाने और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा। सर्वोच्च न्यायालय ने फार्मास्यूटिकल कंपनियों की विपणन पद्धतियों के वैधानिक नियमन की आवश्यकता की जांच के लिए केंद्र सरकार को समिति गठित करने का निर्देश दिया। दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का निधन। भारत ने आतंकवाद पर पाकिस्तान पर दोहरे रवैये अपनाने का आरोप लगाया। पाकिस्तान आतंकवादी गुटों को समर्थन देने की बात छुपा नहीं सकता। और देश वायुसेना दिवस पर सेना के जवानों के बलिदान को नमन कर रहा है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण का उद्घाटन किया। इसमें दूरसंचार, डिजिटल कनेक्टिविटी और प्रौद्योगिकी नवाचार में भारत की उल्लेखनीय प्रगति को दिखाया जा रहा है। 4 दिवसीय इस सम्मेलन की शुरुआत कल हुई थी। इस वर्ष का विषय है सीमाओं से आगे विस्तार। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इंडिया मोबाइल कांग्रेस मंच ने भारत में दूरसंचार क्षेत्र और डिजिटल कनेक्टिविटी के विकास को देखा है।
6: बीते वर्षों में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के माध्यम से बहुत कुछ हासिल किया है। हमारे सामने विकसित भारत का एक विराट संकल्प है। इसके लिए हमें अपने प्रयासों को निरंतर व्यापक करते रहना है। हमें IMC को एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना है जो टेक्नोलॉजी, रिसर्च, इंडस्ट्री, इन्वेस्टमेंट और आइडिया का एक जंक्शन बन सके।
9: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 5G कनेक्टिविटी देश के हर जिले में पहुंच चुकी है। श्री मोदी ने कहा कि भारत में 5G कनेक्टिविटी के संचालन के लिए आज 5,50,000 से अधिक बेस स्टेशन हैं। उन्होंने कहा कि डिजिटल कनेक्टिविटी ने शिक्षा, स्वास्थ्य और सरकारी सेवाओं तक लोगों को पहुंचाने में सुविधा दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरकार लगभग 25 करोड़ विद्यार्थियों को विभिन्न डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा मंचों से जोड़ने का प्रयास कर रही है। श्री मोदी ने दीक्षा प्लेटफॉर्म के जरिए भारत में डिजिटल शिक्षा के बढ़ते महत्व के बारे में जानकारी दी।
6: ऑनलाइन एजुकेशन के लिए हमारा एक दीक्षा प्लेटफॉर्म है। कोविड के दौरान जुलाई 2022 तक इस प्लेटफॉर्म पर 500 करोड़ से ज्यादा लर्निंग सेशन और करीब 6,000 करोड़ लर्निंग मिनट्स दर्ज हुए। अब हमारा प्रयास है हमारे जितने भी डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम है उनसे करीब 25 करोड़ स्टूडेंट्स को जोड़ सके। यानी साथियों, टेलीकॉम के क्षेत्र में जो रेवोल्यूशन आई है इसका भारत के नागरिक को सीधा सीधा फायदा हुआ है।
9: केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 5G को विश्व में सबसे तेजी से अपनाई गई टेक्नोलॉजी बनाने में उपकरण निर्माताओं, दूरसंचार ऑपरेटरों और दूरसंचार क्षेत्र के हर कर्मी की सराहना की।
10: 2014 में हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमें एक विजन दिया था। उन्होंने कहा था कि भविष्य का भारत कनेक्टेड रहे, भविष्य के भारत में डिजाइन रहे और भविष्य का भारत नेतृत्व करे। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस एक दशक में जो संपूर्ण भारत की टेलीकॉम और डिजिटल फ्रेटर्निटी ने करके दिखाया है वो शायद कई और देशों को सदियों लग जाती जो 10 वर्ष की अवधि में भारत ने करके दिखाया है।
9: इस आयोजन में दुनिया भर के तकनीकी क्षेत्र के दिग्गजों, नीति निर्माताओं, उद्योग विशेषज्ञों, स्टार्टअप्स, निवेशकों और नव प्रवर्तकों को एक मंच पर लाया गया है। वस्तु और सेवा कर GST परिषद की 57वीं बैठक आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में हो रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन बैठक की अध्यक्षता कर रही हैं। इसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, कर्नाटक के मंत्री डीके शिवकुमार जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री हिस्सा ले रहे हैं बैठक में जीएसटी विवादों को सुलझाने और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा हो रही है इसका उद्देश्य अनुपालन में लगने वाले समय और लागत को कम करना है इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सरकार स्टार्टअप शिक्षण संस्थानों शोधकर्ताओं और विद्यार्थियों के व्यापक वर्ग तक एआई की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है नई दिल्ली में आज विश्व विकास रिपोर्ट 2026 जारी करने के अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि भारत अब उन देशों में शामिल है जिन्होंने एआई को अपनाकर इसके वास्तविक लाभ हासिल किए हैं सर्वोच्च न्यायालय ने डॉक्टरों को दिए जाने वाले उपहारों और अन्य फायदों सहित फार्मास्यूटिकल कंपनियों की विपणन पद्धतियों के वैधानिक नियमन की आवश्यकता की जांच के लिए केंद्र सरकार को 3 सदस्यीय समिति गठित करने का निर्देश दिया है एक रिपोर्ट
11: न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने ये निर्देश उस याचिका की सुनवाई के दौरान दिए जिसमें दवा कंपनियों और डॉक्टरों के बीच अनैतिक व्यवहारों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की गई थी प्रस्तावित समिति संबंधित पक्षों की राय और सुझाव पर विचार करेगी साथ ही ये देखेगी कि क्या दवा कंपनियों की विपणन पद्धतियों को नियंत्रित करने के लिए किसी वैधानिक ढांचे की जरूरत है या नहीं और यदि है तो उसकी संरचना कैसी होनी चाहिए केंद्र सरकार से इस संबंध में हलफनामा दायर करने को कहा गया है अगली सुनवाई अगले साल 29 जनवरी को होगी समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा
9: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं
3: आपको हर खबर से रखे अपडेट एक्सपर्ट एट एआईआर न्यूज हिंदी और पब्लिक पर एट एआईआर न्यूज अलर्ट्स को फॉलो करें
9: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है भारत ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया है भारत ने कहा है कि पाकिस्तान जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर इनाम की घोषणा करके आतंकवादी गुटों को अपने समर्थन की बात छुपाने की कोशिश कर रहा है भारत ने कहा कि दुनिया 9/11 2008 के मुंबई और 2025 के पहलगाम आतंकवादी हमलों को नहीं भूली है एक रिपोर्ट
12: संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत के प्रथम सचिव रघु पुरी ने कहा कि केवल घोषणाओं से आतंकवाद का खात्मा नहीं किया जा सकता श्री पुरी ने आतंकवादियों उनके वित्त पोषकों और समर्थकों के खिलाफ कार्रवाई पर जोर दिया उन्होंने मसूद अजहर के अफगानिस्तान में छिपे होने के पाकिस्तान के दावे पर सवाल उठाते हुए कहा कि तालिबान सरकार ने इस दावे को खारिज कर दिया है श्री पुरी ने मसूद अजहर के बारे में सूचना देने के लिए 70 लाख रुपए के इनाम की नई घोषणा को भी दिखावा बताया प्रमुख आतंकवादी हमलों का उल्लेख करते हुए श्री पुरी ने कहा कि आतंकवादियों को सुरक्षित ठिकाने उपलब्ध कराना आतंकवाद के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को कमजोर करता है समाचार कक्ष से विशाल शर्मा
9: विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और घाना लंबे समय से साझेदार हैं दोनों देश ग्लोबल साउथ के प्रमुख देशों के रूप में स्वास्थ्य कृषि फार्मास्यूटिकल्स खनन रक्षा रेलवे और डिजिटल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं दोनों देशों ने कृषि अनुसंधान और शिक्षा जैव विविधता वैज्ञानिक अनुसंधान और क्षमता निर्माण के क्षेत्र में समझौते किए भारत ने पिछले कुछ दिन में रियाद के अबहा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हमलों की कड़ी निंदा की है इसमें आम नागरिकों की मौत हुई है और कई लोग घायल हुए हैं विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना पूरी तरह से अस्वीकार्य है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा में 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ उनकी ये यात्रा निरंतर समर्पण और प्रतिबद्धता से जुड़ी रही है सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए ये प्रयास लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है आज हम विशेष श्रृंखला में ऐतिहासिक जलियांवाला बाग स्मारक के पुनर्विकास की जानकारी दे रहे हैं
1: जलियांवाला बाग का जिक्र होते ही वर्ष 1919 में अमृतसर में अंग्रेजी हुकूमत द्वारा किए जुल्म की दर्दनाक यादें ताजा हो जाती हैं। वह 13 अप्रैल बैसाखी का दिन था जब ब्रिगेडियर जनरल रेजिनल्ड डायर ने अपने सैनिकों से सैकड़ों बेगुनाहों पर अंधाधुंध गोलियां चलवाकर उन्हें मार डाला था। ये लोग रॉलेट एक्ट का शांतिपूर्ण ढंग से विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए थे। उस समय इन शहीदों की याद में बने जलियांवाला बाग यादगार को दशकों बाद पुनर्विकसित कर 28 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को समर्पित किया। जलियांवाला बाग कॉम्प्लेक्स में विकास के कई काम हुए। पंजाब की अपनी भवन निर्माण शैली के अनुसार इसकी विरासत बहाली का काम बहुत ध्यान से किया गया। उस वक्त पंजाब में घटित ऐतिहासिक अहमियत की घटनाओं को दिखाने के लिए 4 म्यूजियम गैलरियां बनाई गईं और एक साउंड एंड लाइट शो शुरू हुआ।

0: देश के अलग अलग हिस्सों से इस यादगार को देखने और नतमस्तक होने आए सैलानियों ने इसके पुनर्विकास के काम की तारीफ की।
1: मोहरलाल जोधपुर से, जो हमने किताबों में पढ़ा था वो मैंने आज यहाँ पे आकर के खुद ने अपनी आंखों से देखा और मुझे महसूस भी हो रहा है। गवर्नमेंट इंडिया ने बहुत अच्छा किया है जिससे कि यहाँ पे सब कुछ युवा पीढ़ी है जो, और आगे की जनरेशन के लिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि वो आगे आएंगे, आने वाले पीढ़ी भी देखेगी यहाँ पे कि पहले कैसे हुआ था और क्या हुआ था। गवर्नमेंट इंडिया को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा।
2: मैं बहुत टाइम पहले आई थी उसमें लेके और अब से बहुत काफी सारे चेंजेस हुए हैं। पहले ये मेंटेन नहीं था, काफी अच्छे से मेंटेन किया गया और यहाँ पे गार्डन बहुत अच्छा है, बहुत सफाई है यहाँ पे। इवनिंग में लाइटनिंग भी होती है, पूरा हिस्ट्री के बारे में एक्सप्लेन करते हैं कैसे कैसे क्या हुआ पहले और क्या क्या चेंजेस अभी आए। आने वाली पीढ़ी जो आगे आ रही है जनरेशन, उनको इसके बारे में काफी अच्छे से डीपली पता चलेगा।
3: मेरा नाम आशीष कुमार मिश्रा है, मैं वाराणसी से आया हूँ। जैसा कि मैंने यहाँ के बारे में सुना हुआ था अपने दादा परदादा के मुँह से, बट आज हमने ये कुछ चीजें आके यहाँ पे वो देखे कि जैसे लगा कि हमने मतलब अपने मिट्टी से जुड़े हुए सब चीजें हमको यहाँ पे मिला। और काफी चीजें देख को हमको ये लगा कि उस समय जो हुआ था हमारे यहाँ के गवर्नमेंट सरकार ने ऐसा कुछ किया है कि ये चीजें देख के जाने के बाद हम अपने अगली पीढ़ी को भी बता सकते हैं कि एक बार वो यहाँ पे आए जरूर।
0: जलियांवाला बाग मेमोरियल को आजादी की लड़ाई के दौरान भारतीयों के बलिदान की निशानी के तौर पर हमेशा याद किया जाएगा। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
4: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का आज सुबह गोवा में उनके आवास पर दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे 75 वर्ष के थे। नाना पाटेकर हिंदी और मराठी सिनेमा के जाने माने अभिनेता थे।
5: कैसे बताऊं मैं तुम्हें, तुम धड़कनों का गीत हो, जीवन का तुम संगीत हो, तुम जिंदगी, तुम बंदगी, तुम रोशनी, तुम ताजगी, तुम हर खुशी, तुम प्यार हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो।
6: विश्वनाथ पाटेकर, जिन्हें दुनिया नाना पाटेकर के नाम से जानती है, उनका जन्म 1 जनवरी 1951 को महाराष्ट्र के मुरुड जंजीरा में हुआ था। नाना पाटेकर उन कलाकारों में से थे जो पर्दे पर आते ही किरदार में जान डाल देते थे।
7: आज तुमने राम और अल्लाह को मारने की कोशिश की है, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, हम भले ही ऊपर वाले को अलग अलग नाम से पुकारते हैं लेकिन हमारा धर्म एक है, मजहब एक है, इंसानियत।
6: 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से सम्मानित नाना पाटेकर ने परिंदा, क्रांतिवीर, अग्नि साक्षी, नट सम्राट, अब तक 56 और यशवंत जैसी फिल्मों में अपने अभिनय से अमिट छाप छोड़ी। वर्ष 1978 में गमन से बॉलीवुड में कदम रखने वाले नाना पाटेकर ने अलग अलग तरह के किरदारों को पर्दे पर जीवंत किया। शक्ति द पावर, अपहरण, टैक्सी नंबर 9211 और राजनीति जैसी फिल्मों में उनके अभिनय को खूब सराहा गया। फिल्म वेलकम में गैंगस्टर उदय शेट्टी के किरदार से उन्हें खास तौर पर लोकप्रियता मिली। नाना पाटेकर ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में भी सिनेमा से अपना रिश्ता बनाए रखा। हाउसफुल 5, ओ रोमियो और हाल ही में रिलीज हुए सूबेदार में भी नाना नजर आए। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
4: दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का आज शाम 4 बजे पुणे के पास डोंजे में अंतिम संस्कार किया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार करने का निर्णय लिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाना पाटेकर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। देश आज भारतीय वायुसेना की 94वीं वर्षगांठ मना रहा है। 8 अक्टूबर 1932 को इसका गठन किया गया था। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सभी वायु योद्धाओं, अनुभवी सैनिकों और उनके परिवारों को बधाई दी है। वायुसेना प्रमुख एपी सिंह ने आज वायुसेना की बढ़ती क्षमताओं का उल्लेख करते हुए कहा कि वायुसेना की असली ताकत केवल उन्नत उपकरणों और तकनीक में नहीं बल्कि इसके योद्धाओं में निहित है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से 25 करोड़ छात्रों को जोड़ेगी। उन्होंने कहा, 5,50,000 से अधिक बेस स्टेशनों के साथ 5G कनेक्टिविटी हर जिले तक पहुंची। वस्तु और सेवा कर परिषद में विवादों को सुलझाने और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा। सर्वोच्च न्यायालय ने फार्मास्यूटिकल कंपनियों की विपणन पद्धतियों के वैधानिक नियमन की आवश्यकता की जांच के लिए केंद्र सरकार को समिति गठित करने का निर्देश दिया। दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का निधन। भारत ने आतंकवाद पर पाकिस्तान पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया और देश वायुसेना दिवस पर सेना के जवानों के बलिदान को नमन कर रहा है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: ଏତେବେଳ ଯାଏଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣୁଥିଲେ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆକାଶବାଣୀ କଟକ। ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣିପାରିବେ କିଛି ସମୟ ପରେ।
9: ବନ୍ୟା ହେଉ ବା ମହାବାତ୍ୟା, ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ
10: ଗାଁରୁ ସହର ଯାଏ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ
9: ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ,
10: ଜୁଆଙ୍ଗ ଓ ସାନ୍ତାଳଙ୍କ ଠାରୁ ବଣ୍ଡା ଏବଂ କୋୟାଙ୍କ ଯାଏ, ସବୁରି ଭାଷାରେ
9: କେବଳ ଆକାଶବାଣୀ।

0: पीएम किसान हिताधिकारीको पनि जरुरी सूचना योग्य चासिङको निकटरे सहायता पहुँचाइबा एवं डाटाबेसको स्वच्छ र निर्भुल गरिबा पनि भारत सरकार आरम्भ गरुछन्ति एक स्वतन्त्र अभियान। अक्टोबर 2 रु 31 तारिख पर्यंत राज्यव्यापी चलिबो एही अभियान। पीएम किसान योजनार आर्थिक सहायता निरवच्छिन्न भावे पाइबा पनि एग्रिस्टाक पोर्टल रे कृषक पंजीकरण बैंक खाता सह आधार सीडिंग एवं ई केवाईसी करिबा बाध्यतामूलक। एथिपई पंचायत स्तरीय कृषि कर्मचारी राजस्व अधिकारी किंबा निकटस्थ जनसेवा केन्द्र को जाई एही प्रक्रिया तुरंत संपूर्ण करंतु। कृषि और कृषक सशक्तिकरण विभाग ओडिशा सरकार।
1: एथर शुणन्तु हमराज कथचित्रर एही गीतटी द्वैतकण्ठरे गाइछन्ति कुमार सानु एवं अलका याग्निक। गीतरचना सुधाकर शर्मा, संगीत निर्देशना हिमेश रेशमिया।

0: पीएम किसान हिताधिकारीको पाई जरूरी सूचना योग्य चासिंको निकटरे सहायता पहुंचाइबा एवं डाटाबेसको स्वच्छ और निर्भुल करिबा पाई भारत सरकार आरंभ करुछंती एक स्वतंत्र अभियान अक्टोबर 2 रु 31 तारीख पर्यंत राज्यव्यापी चलिबो एही अभियान पीएम किसान योजनार आर्थिक सहायता निरवच्छिन्न भावे पाइबा पाई एग्रिस्टाक पोर्टल रे कृषक पंजीकरण बैंक खाता सह आधार सीडिंग एवं ई केवाईसी करिबा बाध्यतामूलक एथिपई पंचायत स्तरीय कृषि कर्मचारी राजस्व अधिकारी किंबा निकटस्थ जनसेवा केन्द्र को जाई एही प्रक्रिया तुरंत संपूर्ण करंतु कृषि और कृषक सशक्तिकरण विभाग ओडिशा सरकार
1: एथर शुणंतु धधक कथाचित्रर ए गीतटी कंठशिल्पी अजय गोगावाले गीत रचना अमिताभ भट्टाचार्य संगीत निर्देशना अजय अतुल।

आंखों का एतबार मत करना, ये उठे तो कत्ले आम करती हैं। कोई इनकी निगाहों पे पहरा लगाओ यारों, ये निगाहों से ही खंजर का काम करती हैं।

शाम के चार बज गए हैं, पेश है एफएम रेनबो पर इस घंटे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार डिजिटल और ऑनलाइन शैक्षिक कार्यक्रमों के माध्यम से 25 करोड़ विद्यार्थियों को जोड़ेगी। 5 लाख

0: 50,000 बेस स्टेशनों के साथ 5G कनेक्टिविटी देश के प्रत्येक जिले में पहुंची। श्री मोदी ने नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण का उद्घाटन किया। वस्तु और सेवा कर GST परिषद की 57वीं बैठक नई दिल्ली के भारत मंडपम में जारी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन बैठक की अध्यक्षता कर रही हैं। बैठक में GST विवादों को सुलझाने और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा हो रही है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कल सिक्किम में रंगपो और रानीपुल के बीच नेशनल हाईवे 10 के विकास के लिए 993.64 करोड़ रुपए की मंजूरी की घोषणा की। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सरकार स्टार्टअप, शिक्षण संस्थानों, शोधकर्ताओं और विद्यार्थियों के व्यापक वर्ग तक AI की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने आज नई दिल्ली में गंगा पुनर्जीवन पर गठित सशक्त कार्यबल की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में नमामि गंगे कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा की गई और नदी पुनर्जीवन में तेजी लाने के लिए उद्देश्य से किए जा रहे प्रमुख उपायों पर विचार विमर्श किया गया। आयुष मंत्रालय ने बताया है कि आयुष सेवाओं के कुल श्रम बल में 43% महिलाएं हैं। ये क्षेत्र अनुमानित 17,60,000 आजीविकाओं को सहयोग दे रहा है। वायुसेना दिवस आज मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सभी वायु योद्धाओं, अनुभवी सैनिकों और उनके परिवारों को बधाई दी है। भारत ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान पर दोहरे रवैये का आरोप लगाया है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान जैश मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर इनाम की घोषणा करके आतंकवादी गुटों को अपने समर्थन की बात छिपाने की कोशिश कर रहा है। विदेश मंत्री डॉ S. जयशंकर ने कहा है कि भारत और घाना लंबे समय से साझेदार हैं। दोनों देश ग्लोबल साउथ के प्रमुख देशों के रूप में स्वास्थ्य, कृषि, फार्मास्यूटिकल्स, खनन, रक्षा, रेलवे और डिजिटल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का 75 वर्ष की आयु में गोवा में निधन। दिवंगत अभिनेता का आज शाम पुणे के पास डोंजे में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। त्योहारों के सीजन में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए उत्तर रेलवे नई दिल्ली और श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच आरक्षित विशेष रेलगाड़ियों के 2 फेरे चलाएगा। और मानुष शाह और दिया चिताले की भारतीय जोड़ी ने इतिहास रचते हुए पहली बार चाइना ग्रैंड स्मैश टेबल टेनिस के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। 30 घंटे के FM रेनबो मुख्य समाचार। आगे हमारे प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स।

0: आसमान की बुलंदियों पर जब तिरंगा लहराता है तब दिखता है भारतीय वायुसेना का शौर्य पराक्रम। 8 अक्टूबर 1932 से लेकर आज तक इंडियन एयरफोर्स ने हर चैलेंज, हर चुनौती का साहस और वीरता से सामना किया है, कभी युद्ध भूमि में तो कभी आपदा राहत में। देश सेलिब्रेट कर रहा है आज एयरफोर्स डे, इंडियन एयरफोर्स डे 2026, द डे ऑफ प्राइड एंड ऑनर, जब हम सल्यूट करते हैं अपने वीर जांबाजों को जिनकी उड़ान ने भारत को सेफ एंड सिक्योर रखा है। नभास्पर्शम दीपतम, टच द स्काई विद ग्लोरी। आप सुन रहे हैं देश का नंबर वन रेडियो, आपका अपना रेनबो, और आज का संदेश टू सोल्जर्स है एयरफोर्स डे स्पेशल। आप हैं शाहिद के साथ और हमारे साथ हैं वायुसेना मेडल से सम्मानित सीनियर फेलो एट द मनोहर पारिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस, फॉर्मर इंडियन एयरफोर्स हेलीकॉप्टर पायलट ग्रुप कैप्टन डॉक्टर राजीव कुमार नारंग। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो संदेश टू सोल्जर्स में आज के इस खास दिन।
1: धन्यवाद, मेरा ये सौभाग्य है कि मैं आम लोगों से अपनी भारतीय वायुसेना के दिवस के मौके पर आप लोगों से मिल पाया और अपने लोगों से भारत की वायुसेना के एक पुराने सैनिक खोजने के नाते
0: जी
1: आप लोगों से बात करके कुछ अपने विचार शेयर कर पाऊँ, कुछ अपने एक्सपीरियंस शेयर कर पाऊँ और कुछ फ्यूचर भारत को कैसे एरोस्पेस पावर बनना है
0: जी
1: उस पर बात कर पाऊँ।
0: सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय निकाला और आपकी जो ये कीमती बातें हैं वो हम आज के इतने शो में करेंगे। और हम चाहेंगे अपने लिसनर से हमेशा की तरह से कि आप हमें मैसेज करें। हमारा नंबर है व्हाट्सएप नंबर 9868107070। मोबाइल ऐप पर आप हमें सुन रहे हैं, न्यूज़ ऑन AIR हमारी मोबाइल ऐप है जिस पर आप हमें लाइव सुन रहे हैं। हमारे साथ हैं आज के हमारे बहुत ही खास मेहमान, आज के बहुत ही खास दिन एयरफोर्स डे स्पेशल शो में ग्रुप कैप्टन डॉक्टर राजीव कुमार नारंग। सर, आज एयरफोर्स डे है, एक बेहद ही स्पेशल दिन, न सिर्फ भारतीय वायुसेना के लिए, उसके पराक्रम शौर्य के लिए, बल्कि साथ ही साथ पूरे देश के लिए और देशवासियों के लिए। तो आप सर आज के दिन को किस तरह से देखते हैं?
1: देखिए, भारतीय वायुसेना 8 अक्टूबर 1932 में कराची, जो आजकल पाकिस्तान में है, एक द्रिग रोड एयरफोर्स स्टेशन था जहां पर सिर्फ केवल 4 वापिती जहाज़ों से बनी थी, जो छोटे से 2 बाइप्लेन होते थे
0: जी।
1: और उसको देख के आपने ऑफ सिंदूर में देखा कैसे भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान को एक अपने अच्छा करारा जवाब दिया जब उन्होंने हमारे यहाँ पर एक टेररिस्ट अटैक किया
0: जी।
1: और फिर भारतीय वायुसेना ने अपना संयम दिखाते हुए सिर्फ टेररिस्ट को ही अटैक किया और कोई अपनी लिमिट को क्रॉस नहीं किया।
0: बिल्कुल।
1: तो ये 94 भारतीय वायुसेना की एनिवर्सरी पर मैं भारतीय वायुसेना के अधिकारी
0: जी,
1: एयरमैन, नॉन कॉम्बेटेंट, सिविलियंस, संगनीज और वो सब लोग जो भारतीय वायुसेना से जुड़े हैं उनको मैं अपनी दिल से शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जैसे भारतीय वायुसेना अपने देश की सीमाओं, वायु की रक्षा करती रही है, वैसे ही आप लोग करते रहिए और हम चाहे वर्दी छोड़ चुके हैं, हम आपके साथ हैं और हमें आप पे गर्व है। आपको हम चाहेंगे कि आप ऐसे ही काम करते रहें। और इस साल जो है भारतीय वायुसेना की परेड हिंडन एयरफोर्स स्टेशन में हुई थी
0: जी।
1: ये 3 वर्षों के बाद थी कि हिंडन में दोबारा हुई और थीम दिया गया था स्पेशल, जिसे हमने दिया गया इनफॉलिबल, जिसका मतलब है अचूक
0: जी।
1: और ये अचूक हमने दिखाया कि हम कितने अचूक थे जब हमने अटैक किया पिछले मई 2025 को। इम्परवेश अभेद, मतलब जिसे कोई रोक नहीं पाई दुनिया की, कोई डिफेंस नहीं रोक पाई
0: जी, जी।
1: और प्रिसाइज, आपने देखा होगा कि कैसे हमने छोटी सी जगह पर जाके बिल्कुल एग्जैक्ट जगह पे अटैक किया। तो भारतीय वायुसेना का ये जो थीम है